0: क्या?
1: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराएं, देखो वो गोरी गोरी राएं, हमको इशारों से बुलाएं।

0: साड़ी।
1: छोड़ो मेरा हाथ।
0: मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी साड़ी, छोड़ो मेरी साड़ी।
1: पहले मेरा हाथ वापस करो।
0: क्यों?
1: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र पढ़ती हो?
0: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र

0: Selector Kara Ramjeet. Everyone's Remember the Mom right now is like crazy here. That's the platform, my friends. You know how many people look forward to Sunday through all the years? Since NTN is open, there's so many people look forward to NTN on Sundays from 12. Well, I'm happy that I've been there from the opening. And, you know, the future we don't know, but let's cruise.
1: अभी तक मैंने जितने भी सॉन्ग्स किए हैं YouTube पे या कहीं भी जितने भी लाइफ में मैंने सॉन्ग्स गाए हैं उनमें से सबसे स्पेशल ये सॉन्ग है आज मैं जो गाने जा रही हूँ वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सॉन्ग डेडिकेटेड है मेरी मम्मू के लिए मेरी माँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं मेरे लिए और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप सबको ये मैं कहना चाहूँगी कि वैसे तो आई एम नो वन टू से मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बातें कहने के लिए बट आई थिंक हम सबको अपनी माओं को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि उनसे बड़ा उनसे प्यारा दुनिया में कोई नहीं है सो दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू स्पेशली माई मदर मम्मी ये आपके लिए है और दुनिया में जितनी भी माएँ हैं उन सब के लिए है ये गाना